0: ना इधर उधर देखे, एक मिनट के लिए मेरे आंखों में देखो।
1: एक मिनट
0: गो।
2: लापता हूँ ये बता तू,
1: तुम हार गई।
0: अच्छा
3: मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने get out right now।
0: ना कुछ, सिर्फ एक दिन के लिए।
1: कभी कभी एक दिन भी काफी होता है।

0: friend and a stranger.
1: Sir, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है. We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए.

जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है।

साल पहले ना एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ा चौधरी असलम।

साथ दगाबाजी की ना तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब आपको खसी है।

0: offended a stranger.
1: Sir, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है. We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए. Oh, baby.

वादा किया हुआ उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है।

साल पहले ना एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ा चौधरी असलम।

सादा काबाजी की ना, तुम मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब, आपको खसी है।